आने वाला है तो उसके अंदर से हमारी चाहत कभी जाएगी नहीं, चाहे जैसा भी है। अगर इसे टुकड़े कर दो तो ये हमारी जो इसकी मोहब्बत है इसके दिल में वो कहीं नहीं जाएगी। और कहा दूसरा जो है, कहा वो जितना अच्छा हो अगर उसके टुकड़े टुकड़े कर दो वो मगर हमारा दुश्मन है तो वो दुश्मन ही रहेगा। तो कहा बात वाजे हो गई, असल असास ये है कि हमसे मोहब्बत करना शर्त है, हमारी मोहब्बत वजूद में होनी चाहिए। अब ये जो शख्स बुरा है, ये जो शख्स गलत चीजें करता है, ये असल गौहर नहीं है उसका, ये उसने गलत एक लिबास ओढ़ा हुआ है जो उतार दिया जाएगा। मुतवज्जो है, मैं वो भारी बात नहीं कह रहा हूं, बड़ी आसान सी बात कह रहा हूं, बहुत सादी सी बात है। जाने मोहतरम, आज हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां करते हैं, हमारे यहां बहुत ज्यादा है, वो नमाज नहीं पढ़ता, वो ये नहीं करता, वो फलाना नहीं करता, वो सिर्फ मातम करता है, वो सिर्फ अज़ादारी करता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, कम अज़ कम अल्लाह की तरफ मुतवज्जा है, अल्लाह के रसूल की तरफ मुतवज्जा है, मौला को मानता है। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, हो सकता है कल से नमाज पढ़ना शुरू कर दे, कल को तौबा कर दे अगर कोई गलत करता है। हम एक दूसरे को क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं, वहां एक दूसरे पर नाम लगाते हैं, ये ऐसा है ये वैसा है, तो हम क्यों उसको मस्जिद इमाम बारगाह से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं? यानी मैं नहीं कह रहा कि आप यूं करते होंगे, हम जहन से तो करते हैं इन सारी चीजों को, हमने एक दूसरे के अंदर इख्तलाफ क्यों पैदा कर लिया है, वो ऐसा है ये ऐसा है। नहीं अजीजाने मोहतरम, हो सकता है कोई शख्स की सिर्फ दीनदारी ही सिर्फ चंद दिनों की हो, अगर आप उससे वो भी छीन रहे हैं तो वो तो लादीन हो जाएगा। कम अज कम उसे मजलिस में आने तो दीजिए, मजलिस भी ऐसी हो जो हर किसी के लिए हो, किसी एक शख्स, किसी एक नजरिए, किसी एक ग्रोह के लिए नहीं होनी चाहिए। मजलिस इमाम हुसैन की है, मजलिस बशरियत की बका के लिए होनी चाहिए, बशरियत इस्लाम के निफाज के लिए होनी चाहिए। तो हम लोगों को वेलकम करें, हम लोगों को क्रिटिसाइज ना करें। मौला से पूछा गया, यहीं पर आगे हदीस बढ़ती जाती है, इमाम से पूछा गया, फिर ये इब्ने उमैर की है कि छठे इमाम के पास आया, कहता मौला मैं बहुत सारे लोगों से माशरत करता हूँ, उठता बैठता हूं, उनसे मिलता हूं, मगर मैं देखता हूं कि जो आपका पैरोकार है वो गुनाह भी कर रहा है, वो गलतियां भी करता है, कोताही भी करता है, मगर मैं दूसरे लोगों से भी मिलता हूं जो आपके दुश्मन है, मगर वो अपनी जिंदगी के मामलात में बड़े सच्चे हैं। तो कहते हैं मौला ने बड़ी अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और कहा कि जो हमसे मोहब्बत करता है असल वही शख्स है जिसका हर अमल कबूल होने वाला है। मौला ने वाजे कह दिया कि वो जो करता है वो गुनाह, असल में वो फिस्क खुद फासिक नहीं है, वो उसका सिर्फ अमल फासिक हुआ हुआ है, यानी अमल फासिक हुआ हुआ है, और ये अमल हमारी विलायत उसके इस गलत अमल को पाक कर देगी। नहीं नहीं नहीं, आपको समझ में नहीं आ रही बात यार। दुनिया बहुत सारे बोलेंगे मौलाना साहब ने कह दिया कुछ भी कर दे रहो जिंदगी में, नहीं कतन ऐसा नहीं है, अपनी मर्जी की बात लेकर उठना है तो जहां से दिल चाहे उठ जाए, आपकी अपनी मर्जी की बात है। नहीं अजीजाने मोहतरम, वहां इमाम क्राइटेरिया दे रहे हैं, क्राइटेरिया दे रहे हैं, और ये क्राइटेरिया मैं नहीं दे रहा आपको, इमाम क्राइटेरिया दे रहे हैं। लेकिन क्या हम, इमाम ने जो कहा, इमाम ने फरमाया कि ये जो गलतियां कर रहा है ये खुद नहीं है, ये खुद नहीं है, ये अमल है जो इसके ऊपर आया हुआ है, ये इसका असल वजूद ये नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। यानी वो शख्स जो विलायत अहले बैत रखता हो वो अपने वजूद से गुनाहगार हो ही नहीं सकता, वो नहीं हो सकता, वो उसका असल वजूद गुनाहगार हो ही नहीं सकता। लेकिन जब तक जिंदा है उसको मौका है, और अगर उसने गुनाहों के अंदर गोते ज्यादा मार रहे तो फिर हमारी विलायत उसे छोड़ देगी, ये भी है, विलायत छोड़ देगी उसे। अभी नहीं पता, अभी हम लोगों को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, अभी सब मिक्स है, मिक्स से मुराद अच्छा बुरा सब मिक्स है। आप देखेंगे सामने कोई शख्स है अहले बैत को नहीं मानता, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप बाहर देखें यूरोप में बड़े लोग इंसान की जितनी मोहब्बत नहीं कुत्ते से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो, यानी आप बोलते हैं बहुत ख्याल रखने वाली कौम है भाई, ये तो इतना ख्याल रखती है, तो कुत्ते का ख्याल। मैं जर्मनी गया, हमारे एक दोस्त जॉब करते थे तो आए, कहने लगे हमारे ऑफिस में खातून थी, कुछ दिनों बाद आई

0: अब जबकि तुमने लिबासे जंग पहन रखा है और अपनी बैत पर बाकी हो, सरजमीने करबला तक अगर अपने सरदार उमर साद की रकाब में रहकर तलवार उठाने से गुरेज किया या पछताए तो तुम्हारा खून मुबाह हो जाएगा। ये बात अच्छी तरह समझ लो। तुम्हारा माल जब्त करके हुकूमत को दे दिया जाएगा और तुम्हारे अहलो अयाल पर हुकूमत का हक होगा। इसलिए होश के ना खून लो और ना फरमानी न करो।
1: आखिर क्यों?
0: अमीर
1: ये नहीं हो सकता।
0: सरपेची और हुकूमत इस्लामी
1: ये नहीं हो सकता।
0: सबब बनेगी। लिहाजा होश में रहो और ना फरमानी बिल्कुल ना करना। सहरा और रास्तों में, सोते और जागते वक्त, जहां भी बैठो और खड़े रहो, याद रखना अमीर यजीद के हुक्म की नाफरमानी।
2: आप पर कुर्बान जाऊं यहां क्यों खड़ी हैं? मैंने आपसे कहा तो था काफिला आएगा तो आपको खबर कर दूंगी।
3: मुझे कुछ साया नजर आ रहा है, कोई काफिला रास्ते में है।
2: खुदा का शुक्र है, चले कहीं बैठते हैं। आइए।
0: जो भी सिपाही मैदान जंग से फरार होगा उसकी यही सजा होगी।
2: चलिए यहाँ से।

0: यहाँ से चलिए बानो, इंशाल्लाह वो कल आ जाएंगे।
1: बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि शमी ने मेरे साथ ऐसा किया, गोया कि मुझे छत से जमीन पर फेंक दिया हो या आधी रात को मेरा घर लूट लिया हो।
2: आहिया बेटी, तुम हक पर हो, लेकिन तुमने देखा कि किस तरह वो आसमान से जमीन पर आ गिरी है।
3: आखिर शमीन खाला ने क्या किया है?
1: इसके बाद खाला ना सुनो मैं।
2: सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: सलाम।
0: रुकिए जरा,
2: जल्दी करें।
0: आओ जरा,
1: आ जाओ।
2: सलाम।
0: सलाम वालेकुम। ये क्या इतने साजो सामान, वो भी करबला के लिए? सामान कम कीजिए बहनों, जल्दी
1: जल्दी कीजिए। सामान कम ले चलेंगे, जल्दी कीजिए।
0: जी
1: आइए।
0: अगर मेरे सामने उसका किस्सा तमाम कर दिया होता तब भी मेरे दिल की आग ठंडी नहीं होती। मेरी हड्डियां मेरे गम से चूर ना हो जाए।
2: आया, मैं क्या करूं कि दिल हल्का हो जाए, क्या करूं?
0: मुझे तभी सुकून मिलेगा जब कौम से इंतकाम लिया जाए। बासित ने क्या किया था जो उस पर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी, सिर्फ मेरे एक हद के लिए?
2: जो इमाम से दुश्मनी कर सकते हैं वो बंदगाने खुदा के साथ सब कुछ कर सकते हैं। हम उस सरजमीन की तरफ जाएंगे जहां कायनात की उम्मीदों का नूर है। बिस्मिल्लाह। आया, तुम्हारा दिल दागदार है, तुम दुआ करो, दुआ करो कि इन लोगों की मेहनत अंजाम तक पहुंच सके।
0: इंशाल्लाह।
2: इमाम के आते ही ये जहन्नुम जैसा शहर गुलेस्तान हो जाएगा।
0: इंशाल्लाह।
2: बिस्मिल्लाह, जल्दी कीजिए, चलते हैं। आ जाओ मेरी बेटी।
0: आओ बेटी, चलो।

0: कैसे जीतते हो तुम?
1: अगर तलवार असली होती तो 100 बार मर चुके होते। समझ में आ रहा है तुम्हें बदबख्त?
0: सही कहा, काश कि मेरी ये तलवार असली होती।
1: जाओ वरना लात और घूसों से भुर्ता बना दूंगा तुम्हारा।
0: होरेस के बेटे हो, औहद के पोते को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते हो।
1: अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो ना तुम।
2: इधर आओ। अलवान, क्या कर रहे हो?
3: क्या कर रहे हो लड़के? हम बेघर हो जाएंगे। इसका बाप हम सबको तिजारत खाने से निकाल देगा। चलो मेरे साथ। उम्र में बड़े हो गए हो लेकिन अकल जरा भी नहीं है।
2: मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे भाई पर हाथ उठाया है।
3: चलो।
0: देखा कैसे उसे धूल चटाई।
4: तुम लोग जितने भी कोशिश और इतराज कर लो कुछ बदलने वाला नहीं है। मेरे इख्तियार में नहीं है। हुक्म है कि किसी को भी कुछ भी ना दिया जाए और यही आखिरी फैसला।
5: हमने क्या खता की है?
4: क्या खता की है?
0: सुनो अलवान,
4: खुदा का दुश्मन जैसा कहा था। आ गया और पूछ रहे हो क्या खता की? अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं इब्ने ज़ियाद की जिंदगी की दुआ करता कि वो हमें इस गलती की सजा ना दे।
6: क्या मतलब?
4: मतलब यही कि

0: जब मी समेत मार के जनाजे को चुराने वाले तुम्हारे साथ रह रहे हैं तो क्या हुकूमत तुम पर सोना और सिक्का लुटाएगी?
1: वाकई सोने के और सिक्के हैं या सब अली के बेटे से जंग के लिए खर्च कर दिए हैं? सारे अरबी जवानों को तो जंग पर भेज दिया है, अब सिर्फ हम रह गए हैं और कुछ अजमी जवान जो खिदमत के लिए हमसे मजदूरी वसूल करते हैं। हम अजमों को किस चीज की मजदूरी दें? उन्हें क्यों जंग पर नहीं भेजा जाता? बेहतर होगा कि आप इसका जवाब दें।
0: अरबी मर्दाने मैदाने जंग है ना कि अजमी, ताकि अजमी निफाक से दूर रहें। हजरत यजीद की मदद ना करना उनके दुश्मन की मदद करने जैसा है।
2: छत तक पूरा लदा और भरा पड़ा है, क्या कहूँ, जगह नहीं है।
3: खुदा की कसम तुमसे बेहतर कौन होगा?
2: हाँ?
4: सारा माल आधी कीमत पर दूंगा ताकि कूफे से खाली हाथ ना जाओ।
2: क्या करो इसका। माजिद, तुम्हारा माल क्या है?
4: मिस्री रेशम।
2: मिस्री रेशम, रेशम का क्या करूंगा? ओफो, क्या करूं कि मेरा ईमान तुम्हें अकेला छोड़ने की इजाजत नहीं दे रहा।
5: खुदा आपको खैर दे।
2: ठीक है, जाइए, जाकर अपना सामान लेकर आइए, जगह का कुछ कर दे।
4: खुदा आपको जजाए खैर दे। यकीन माने, अगर इस बार इस शहर से खाली हाथ जाना पड़ा तो अपना सर दे दूंगा, लेकिन इस शहर के लोगों के सामने मैं अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगा।
2: अपने ईमान की हिफाजत करो, ईमान को बचा कर रखो। अगर इस मामले में खुद को मजबूर पाते हो तो इल्जाम ना दो, राजी हो तो छोड़ दो।
4: राजी हूँ शेख, राजी हूँ।
2: राजी हो तो बिस्मिल्लाह।
4: खुदा हाफिज।
6: दादा जान।
2: बोलो बेटे।
6: आप लेन देन कर रहे हैं, आपके लिए खबर है।
2: कौन सी खबर?
6: मिसम के जनाजे को चुराने वाले का नाम बताऊंगा, लेकिन मुझे इसकी पूरी कीमत चाहिए।
2: नाइम, कैसे मान लूं? तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवाऊंगा, लेकिन कैसे मालूम होगा कि तुम सच बोल रहे हो?
6: मैंने खुद अपनी आंखों से उस रात गली में देखा था।
7: फिर मैं कैसे नहीं देख सका?
6: आपका ध्यान नहीं था क्योंकि तलवार चला रहे थे।
2: उस अंधेरी रात में उसका चेहरा कैसे पहचाना?
6: उसको पहचानता हूँ, अजनबी नहीं थी।
7: सोच लो, कहीं कहीं अपनी माँ से मिलने के लिए किसी बेचारे को गुनहगार तो नहीं ठहरा रहे हो?
2: सुना नहीं क्या कहा? उसको पहचानता है, अजनबी नहीं है वो। नाम जब बता देगा तो उसके पास जाएंगे, अगर मुजरिम नहीं होगा तो भागेगा नहीं। हाँ तो वो बदबख्त चोर कौन है?
6: जब तक मामले की कीमत अदा नहीं करोगे मुंह नहीं खोलूंगा।
2: मेरा पोता बिल्कुल मेरी तरह है।
6: सिक्के नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी माँ।
2: ठीक है, मंजूर है। यही कि तुम्हारी अक्ल ने काम किया और मेरे पास आए, मंजूर है। तुम सच में अपनी माँ को देखने के काबिल हो। सुबह तुलू होने से पहले अपने बेटे का जवाब दो, उसे माँ से मिलवा दो।
6: अगर कल आपने धोखा दे दिया तो इसलिए अभी बताइए।
2: नहीं, कसम खाता हूँ, कुरान की कसम खाकर कहता हूँ कि अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। कल अपनी माँ से मुलाकात करूंगे, लेकिन सिर्फ तुम अकेले, हातिफ नहीं। तो वो हराम खोर मर्द कौन था जिसका तुमने कत्ल किया?
6: मर्द नहीं था।
2: मर्द नहीं था?
6: सामिया, हिलाल की माँ। मैंने देखा कि जनाजे को डर के मारे घसीट के ले जा रही थी।
2: सर से पांव तक तुम पर सोना निछावर करना चाहिए। तुम्हारे सर का एक बाल मेरे तमाम आदमियों से ज्यादा कीमती है।
7: कहाँ?
6: सोने जा रहा हूँ ताकि कल अपनी माँ को देखते वक्त ताजा रहूं।

0: पापा, मालूम है ना कि क्या वादा किया है। अगर कल उसने अपनी माँ को नहीं पाया तो उसका ईमान भी खराब होगा और फिर जिंदगी भर कभी जबान नहीं खोलेगा। मुझे बदबख्त कर दिया।
1: इसे ले जाओ उसकी माँ के पास।
0: क्या कहूं उसे, बताऊं कि उसके दादा ने उसकी माँ को कत्ल किया और उसके जनाजे को इस तरह गायब किया कि उसकी कब्र का निशान तक न छोड़ा।
1: उसकी कब्र को ढूंढ रहे थे, उसकी कब्र यही है मेरे कदमों तले, जिसके वो लायक थी। जल्दी करो ताकि तुम्हारे बेटे का ईमान बचा रहे।

0: सलाम।
1: माफ कीजिए, हम आपके साथ नहीं आ सकते।
0: नहीं।
1: क्या लगता है अब क्या होगा?
2: कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
0: माँ, दरवाजे के मुहाफिजों पर कितना भरोसा है आपको?
3: जहाँ तक मुझे पता है वो बच्चों और औरतों से बगैर कुछ पूछे जाने दे रहे हैं। तुम परेशान मत हो।
1: जरूर इतने ज़ियाद की बातें कर रही है।
0: अगर समझ गए कि हम करबला जा रहे हैं, अगर हमें गिरफ्तार कर लिया तो मैं इन बच्चों के साथ क्या करूँ?
3: आहिया, अगर आने का इरादा कर लिया है तो परेशान ना हो और डरो मत।
1: सही कह रही है। वो किस तरह भला तुम पर एतिमाद करे जबकि तुम्हारा बेटा इमाम के मुकाबले में खड़ा है। हमने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारी है सामिया, लेकिन इस बार हम अलग हैं। वो अगर तुम्हारी अम्मी बहू को नजरअंदाज करे और उसे हमसे अलग समझे। जब से इब्ने मरजाना तख्ते हुकूमत पर आया है, हमारे शहर के मर्दों के सिक्कों के जरिए खरीदो फरोख्त हो रही है। माफ करना, मेरे दिल में शक पैदा हो गया। हम चलते हैं।

0: मुश्किलें बढ़ा रही हो नायला, हिलहाल बच्चा तो नहीं है।
1: ऐसा बच्चा है कि मेरी आंखें जिसकी मुंतजिर है, ना कोई खत ना कोई खबर। उसके जाने से पहले जो उसके कान में कहा, यकीन नहीं था कि एक नया खेल शुरू हो जाएगा।
0: तुम्हारे वालिद से बात करूंगी, बहुत से लोग करबला की तरफ जा रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी किसी को भेजे जो हिलाल की खबर मालूम करे। समझ गई ना तुम?
1: नहीं, मेरे ख्याल से सामिया का काम है। सामिया का बेटा यजीद के लश्कर की खिदमत करे और वो बैठी देखती रहे। हिलाल के जाने की खबर सारे कूफे में फैल चुकी है। ये औरत यूं ही नहीं बैठी रहेगी। मुझे यकीन है उसने हिलाल के साथ जरूर कुछ किया है।
0: हिलाल तो बिना बताया गया है, सामिया से वो कहां मिला होगा?
1: मुझे क्या मालूम कौन सा फितना खड़ा किया है। जरूर कोई खत

0: आसिद वगैरह भेजा होगा। कितनी बदबख्त है नायला। अच्छा या बुरा, आज दर्द और मरहम एक है। फिलहाल वालिद से कुछ ना कहें।
1: जनाब, जनाब मैंने देखा वो घर में ही है।
0: अंदर जाओ।
2: लाओ इधर लाओ। जनाब वो घर के अंदर छुपी है।
3: ए सामिया, ये आखिरी बार तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ, बाहर निकल आओ। अपनी आंखों से देख लो, मेरे हाथ में मशाल है। सुन रही हो या नहीं बदबख्त औरत?
0: अरे वाय हो, तुझ पर तेरी माँ तेरे गम में बैठे।
3: मुझे बाकी घर वालों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अगर सबने जलने का इरादा कर लिया है तो फिर मैं क्या करूं? आग लगा दो।
4: कूफे के मर्दों को जंग पर भेज दिया ताकि उनकी औरतों और बच्चों को आग से डराओ। लाना तो तुम्हारी गैरत और मर्द।
5: पंची की तरह जबान चल रही है हा?
4: अगर तुम लोगों का बस चले तो तुम हम सभी को यहीं जिंदा जला दो।
0: रुक जाइए। जनाब अम्र, आपकी शान के खिलाफ है औरतों के रूबर होना।
6: अलैकुम अस्सलाम।
0: सामिया को उसकी बहू के सुपुर्द कर दें, थोड़ा हिसाब मुझे भी करना है। हिसाब बराबर करके आपके हवाले कर दूंगी। उसके बाद आप लोगों की नजरों में सर बुलंद और इब्ने ज़ियाद की तारीफ के हकदार होंगे।
6: सर बुलंदी का मियार खुदा की रजामंदी है ना कि लोगों की। सामिया एक खबीस जानवर है जिसने सबको परेशान किया है, खासकर आपके खानदान को। मुझे खबर मिली है कि एक उसे खरीदता है और दूसरा बेचता है।
0: फिलहाल इसे मेरे हवाले कर दे।
6: इन नजर जमाए आंखों का क्या करूं? अब बात का कोई फायदा नहीं है।
0: इब्ने हुरैस, अच्छा इनाम दूंगी।
1: जनाब, दारुल हुकूमत में कोई मुश्किल पेश आ गई है। जनाब इब्ने ज़ियाद की ताकीद है कि उनके पास पहुंचे।
6: इब्ने ज़ियाद के हुक्म के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे इनाम के लिए। कल दोपहर तक सामिया तुम्हारे हवाले। अलबत्ता यहां मौजूद लोगों की नजरों से बचकर।
3: गर्चा तुम्हें सजा देने की जल्दी है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं है, इसलिए उस वक्त तक यहां रुकूंगा जब तक दरवाजा ना खुल जाए। इस घर पर नजरें जमाए रखना।
1: जी जनाब।
0: खुदा का शुक्र है कि यह किस्सा तमाम हुआ। यहां से जाइए, परेशान ना हो। जाइए जाइए यहां से जाइए।
3: नजरें जमाए रखना।
7: जी जनाब।

0: शौहर कहाँ है जो इतनी रात में बच्चे को लेकर काम कर रही हो?
1: जी था, लेकिन उसे तीरों कमान थमाकर करबला भेज दिया गया।
0: सारा माल कितने में दोगी?
1: सारा माल

सामिया, मैं हूं तुम्हारी बहू नायला। कहां हो तुम? आया, मेरी आवाज सुन रही हो?

0: अमरा और उसके लोग चले गए, सिर्फ दो लोग बचे हैं। हिलाल की कसम अकेली आई हूं, जल्दी करो इससे पहले कि कोई आ जाए। पीछे हट जाए। कहाँ का इरादा है? आवाज तो नहीं करोगी? अपने बेटे का पता बता दो, वहीं चलेंगे। मैंने कहा जल्दी से अपने बेटे का पता बता दो।
1: घर से तुमने मुझे निकाला है और मुझसे पूछ रही हो कि जाना कहाँ है? अपने शौहर का पता मुझसे मांग रही हो? खुदा का बहुत बहुत शुक्र है कि तुम्हारे बाप के चाहने वाले मेरे बेटे के नाम को खूब जानते हैं।
0: अगर मोहतरमा ने खतना दिया होता तो आज मेरा शौहर मेरे पास होता, वरना हिलाल कहाँ और करबला कहाँ?
1: नायला, कूफे वालों की बेसुध बातों को सिर्फ सुनो, यकीन मत करो। मुहाल है कि मेरा बेटा ऐसा काम करे।
0: लेकिन इत्तफाकन इस बार लोगों की बात सही निकली, तुम्हारा बेटा इस वक्त करबला में है। वादा किया है कि लौट कर आएगा, काफी ले हिलाल के बगैर आए हैं। सच बताओ, किस बयाबान में हिलाल को भेजा है और कहा है कि अगर वापस आओगे तो माफ नहीं करूंगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोबारा खत लिखा है? हाँ,
1: शायद तुम भूल गई हो कि किससे बात कर रही हो। बेहुदा बातें ना करो। अगर मेरा बेटा करबला गया भी होगा तो इसलिए ताकि अपने इमाम की रकाब में जंग कर सके, उसके अलावा कुछ भी मुहाल है। आगे बढ़ो।
2: ताज्जुब है कि कैसे इन दोनों मासूम बच्चों को छोड़कर चली गई, समझ में नहीं आ रहा। माँ होना आग होने से भी सख्त है। सच में नाहिला की हालत ने तो मुझे बहुत परेशान करके रखा है। बेचारी पागलों की तरह हो गई है, हमेशा हिलाल की तलाश में फिरती रहती है। लोग उसके बारे में बातें करते रहते हैं लेकिन उसके शोहर की कोई खबर नहीं। आखिरी बार उसकी खबर कब ली थी? उसकी हालत पूछी थी क्या? उसके लिए कुछ किया भी था? कितनी बार तुमसे इल्तिजा की कि उससे शादी की इजाजत ना दो, लेकिन तुमने नहीं सुना। मगर अब तो कुछ करो, उसके लिए कुछ करो। मैं इल्तिजा करती हूँ,
3: मुझसे बात करें आप, मेरी ओर देखें।
2: जब आपसे बात करूं तो इधर उधर देखने के बजाय मेरी तरफ देखा करें।
4: मैं बेकार नहीं बैठा जो तुम्हारे दामाद के जरायम को छुपाता फिरूं। उसकी गलती उसे ही मुबारक, अब सजा का मंतजिर रहे।
2: दामाद चाहे जहन्नुम में, अपने बेटे के लिए अमन और पनाहगाह बनो। जाओ पूछो हिलाल करबला में है या वो वहां से भाग निकला, जिंदा है या मर गया। नाइला पर कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ कि उसकी किस्मत खुदा ने तारीकी और स्याही के साथ लिखी है। क्या करे?
4: कुफ्र मत पकोबे।

0: कम कोफर मत बको।
1: काश मैं मर जाती लेकिन अपनी बेटी को तकलीफ में ना देखती।
0: बस करो।
1: बस करो? क्या मैं उसकी माँ नहीं हूँ? बोलिए, नायला को ऐसे तकलीफ में देखकर कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं? अगरचे आप मुझे माँ के लायक नहीं समझते, मैं वो कनीज हूँ जिसकी बेटी तुम्हारे अम्बाल का हिस्सा है, यही ना?
0: ला इलाहा इल्लल्लाह।
1: खुद ही सारे फैसले करते हो, मैं किस काम की? मैं किसी लायक नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ।
0: परेशान मत हो, हिलाल को किसी बुरी जगह नहीं भेजा है। उसी दिन ये खत उसके हाथ में देकर इब्ने साद के पास भेजा था। मैंने उसमें उसकी जंगी महारत और तीरंदाजी के बारे में लिखा था कि वो उसे वहीं रखे।
2: क्या हिलाल को कर्बला में रोक रखा है? नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं।
0: अस्तग़फिरुल्लाह, मुंह बंद रखो।
1: ठीक है, तो अगर कर्बला में है तो नायला को क्यों नहीं भेज देते कि मेरी बेटी इस तरह से बदहाल ना हो? जवाब दीजिए आप।
0: तुमने अपनी आंखें कहां लगा रखी हैं औरत? देख रही हो कि शहर लोगों से खाली है। अगर हिलाल मौत और जंग के दरमियान होता तो मौत को ही इंतखाब करता, इसीलिए भेजा ताकि वो जिंदा रहे। लेकिन तुम्हारी और मेरी बेटी की अक्ल बात को बिल्कुल नहीं समझ रही है।
1: बिस्मिल्लाह।
0: इसे हटाओ, हटाओ यहां से, जल्दी करो।
1: उठ जाओ, उठ जाओ।

अगर गुनाह ना होता तो अपने पंजों से जमीन खोद कर इस कब्र से तुम्हें बाहर निकालता। काश एक बार और मौका मिल पाता। अफसोस है आखिरी वक्त पर मैं तुम्हारे पास नहीं था। तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम्हारी ये जगह नहीं है इस बदबख्त के पैरों तले। ये जगह हातिफ और अलवान की माँ के लायक नहीं है। नहीं पता तुम्हारे लिए गिरिया कर रहा हूं या पागल हो गया हूं।

0: कौन है? कौन है?
1: तुम यहां हो?
0: तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए।
1: बेकरार हूं, बाबा की तलाश में आई थी लेकिन नहीं मिले।
0: यहां नहीं है।
1: कहां है?
0: मुझे क्या पता।
1: सामान का काफिला हिलाल के बगैर लौटा है, इसलिए परेशान हूं।
0: उम्र साथ के यहां रह गया है और यही तय पाया है।
1: किसने तय किया ये कि मैं इससे बेखबर हूं?
0: उसी ने जिसने उसे मक्का से अगवा करने का हुक्म दिया था।
1: इब्ने सियाद?
0: औहद।
1: ये क्या कह रहे हो नईम?
0: तुम बेचारी इतनी भोली हो कि अपने बाप को नहीं पहचान पाई। जिसने तुम्हारे शोहर को कोफे लाने का हुक्म दिया वो मरजाना का बेटा नहीं था, और खत से सिर्फ औहद बाखबर था बस।
1: तो फिर इब्ने सियाद का हुक्म और कैद का माजरा?
0: तुम्हारे बाप के काले कारनामे तुम्हें इब्ने हुरैस के कैद खाने की तरफ फरेब ना दे।

0: मेरे शौहर को मक्का में तनहा छोड़कर झूठ के सहारे क्यों गिरफ्तार करवाया बताओ?
1: ताकत के बलबूते पर सबको अपनी कुदरत के तले कुचल दे और तुम्हारी दर्द और तकलीफ का बैठकर तमाशा करें।
0: तुम तो औहद के हम प्याला हो, फिर ये सब एहतराफ क्यों कर रहे हो?
1: मैं तुम्हारे बाप के हाथ की कठपुतली बन चुका हूं। काफिले को कत्ल करने का मकसद गैरत को जिंदा करना था। जो कह रहा हूं जान लो, मेरे दो बेटों की कसम की उस दिन मेरा तुमको कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था। तुम मेरी सौतेली बहन हो। मुझ में और औहद में यह फर्क है कि मैं अपनों को कत्ल नहीं करता। क्योंकि अपने खानदान का मतलब समझता हूं।

0: कुछ हुआ है क्या इब्ने हुरैस?
1: तुम्हारे रिश्तेदारों की क्या खबर है औहद?
0: कौन से रिश्तेदार?
1: बिलाल की माँ।
0: आखिरी बार उछलते कूदते तुम उसके पीछे गए थे, उसके बारे में मुझसे पूछ रहे हो?
1: अच्छा, घर वाले नहीं है क्या? ना कोई शोर और गुल, ना कोई आमद और रफ्त।
0: लेकिन सिपाही का दिलो दिमाग बंद है।
1: तकलीफ देने का मकसद वो पोशीदा खत है जो आपके बेटे के लिए आया है। मुझे हुक्म हुआ है कि फौरन बगैर ताखीर के इसे करबला पहुंचा दूं।
0: नईम के जिम्मे हजार काम और जिम्मेदारियां हैं। मेरा तिजारत खाना एक तरफ और लोगों के लिए बख्शीश दूसरी तरफ। अफसोस है कि जंग में हाजिर होने की सआदत से महरूम हूं।
1: आखिरी बार जब हमारी बात हुई थी तो उसने करबला जाने वाले एक लश्कर की कमांड का खुद ही मुझसे मुतालबा किया था। मैंने भी उसकी बात नहीं टाली।
0: बिल्कुल है, मुझे नहीं बताया, शायद बताना चाह रहा हो। अगर कबीला भी मुकाबले में आ जाए तो जिहाद वाजिब है और मुकद्दम भी।
1: यकीनन ऐसा ही है।
2: अस्सलाम
1: वालेकुम। माशाल्लाह, माहिर शमशीरबाज। कूफे के बाजार में खूब गर्द और खाक उड़ाई तुमने। सुना है बेटा बाप से भी बहादुर है।
0: जिसने मीसम के जनाजे के चोर का पता लगाया वो यही शेर का बच्चा है, जिसने खुद देखा था। क्यों, ऐसा ही है ना?
1: बहुत खूब। हुकूमत का इकबाल तुम्हारी जहानत से बुलंद हुआ है बेटे।
0: जाओ।
3: जी अभी आया।
4: कोई मेहमान है?
3: जी जनाबे हुरैस हैं।
4: थकावट खत्म कर लो तो उन्हें खबर करो। हुरैस, आतिफ और अलवान को बुलाओ, उनसे काम है।
3: जी जनाब।
5: बाबा आप आ गए।
4: जब तक यहां नहीं हूं अपना ख्याल रखना, बाजार के वाकिए की तरह, ठीक है?
5: जरूर।
4: मेरे पुश्त पनाह बने रहना।
6: फिर जो तय किया था उसका क्या?
5: क्या तय किया?

0: जंग बच्चों की जगह नहीं है बेटे। लोग सहरा से भागते हैं, तुम कहाँ और नैनवा कहाँ?
1: तुम्हारे बेटों की जगह है मगर ऊंट की पुष्ट पर, ताकि उसकी बुलंदी से इस्लाम की कामयाबी का नजारा कर सके। अलवान को जंग देखने की इजाजत उसकी शुजाअत की बुनियाद पर अमीर इब्ने जियाद ने दी है।
0: तो तुमने खुद ही फैसला भी कर लिया, क्या बाप की इजाजत की जरूरत नहीं है?
1: ऐसा ना कहें जनाब नईम, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि होश व शुजात के लिए मैदान जंग उनके लिए जरखेज जमीन है। अलवान, अगर मैं ना भी कहता तब भी तुम्हारा बाप तुम्हें जंग के मैदान में जरूर ले जाता।
2: तो फिर पहले कर्बला जाएंगे, फिर उसके बाद फौरन जो हमने तय किया वहां जाएंगे।
3: क्या तय हुआ और कहां जाना है?
0: बताऊंगा।
2: बताएं बाबा।
0: मेरी जान,
2: दादा सही कहते हैं।
0: किस बारे में?
2: अमीर के हुक्म की नाफरमानी गुनाहे कबीरा है।
0: हाँ, गुनाहे कबीरा है। चलो अब यहां से जाओ, जाओ जल्दी।
4: इन्हें अंदर ले जाओ।
5: हमेशा मेरे लिए भाई से इफ्तिखार हो।

0: मेरे रास्ते से हट जाओ नायला, कहीं पागल ना हो जाऊं।
1: कहां जाएंगी?
0: कर्बला, कर्बला जाऊंगी ताकि अपनी आंखों से जो तुम झूठ बोल रही हो उसे देख सकूं।

0: अगर हिलाल मेरा बेटा है, अगर मैंने उसे पैदा किया है, तो मुहाल है वो अपने इमाम के मुकाबले में तलवार उठाए। उसको हराम लुकमा नहीं खिलाया कि तुम्हारे सामने मुझे जलीलो ख्वार होना पड़े।
1: सामिया, अगर इस घर से कदम भी निकाला तो गिरफ्तार कर ली जाएंगी। सिपाहियों को तो छोड़ो, तुम्हारे बाकी दुश्मन भी तुमसे इंतकाम लेने के इंतजार में बैठे हुए हैं।
0: तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। करबला जाना और पहुंचना मेरी अपनी जिम्मेदारी है।
1: माना कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। परेशान ना हो, तुम्हारा हिला लौट आएगा।
0: तुम्हारी बातों से महसूस हो रहा है कि तुम कुछ ऐसा जानती हो जिससे मैं बेखबर हूं।
1: आखिरी दिन मैंने हिलाल से वादा किया था कि अमीर की नाफरमानी ना करें और सामान पहुंचाकर लौट आए। मैंने उससे कहा था कि मेरे लिए नहीं, पर उसके उसके आने वाले बच्चे के लिए। उसे जरूर लौट कर आना होगा।
0: इस जुल्मत और तारीकी में रहमत इलाही की अच्छी खबर सुनाई। अच्छी खबर परवरदिगार, परवरदिगार।
1: तो फिर जब तक हिलाल ना आ जाए, परेशान ना हो, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करे।
0: मेरी परेशानी और ज्यादा हो गई है, अपने हिलाल के लिए भी और तुम्हारे मासूम बच्चे।

0: दरवाजा खोलो। नायला कहाँ जा रही हो?
1: यहाँ ज्यादा अमन है। अमरो और उसके लोग रहम की जबान नहीं जानते। मुझे माफ करना।
0: कब तक? कितने दिन यहाँ रहूंगी? तुमसे कह रही हूँ,

0: पहलवान, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज। बिना बताए कैसे?
2: मेरे सरदार इब्ने ज़ियाद का हुक्म था।
1: ये लीजिए जनाब।
2: खुद ने ही तो कहा था कि अमीर के हुक्म के नाफरमानी गुनाह कबीरा है।
3: नाइला, नाइला, कहाँ है नाइला?
4: वालेकुम अस्सलाम। क्या किया उसने कि इस तरह सरगर्दां आई हो?
3: मैंने पूछा नाइला कहाँ है?
4: नहीं है।
3: यानी क्या? अब क्या नई कहानी बनाई है? मेरा भाई तुम्हारे लिए काफी नहीं था जो अब मेरी माँ की बारी आ गई?
4: क्या बक रही हो बिनते हनीफ? आदमी की जबान नहीं समझती? आदमी की जबान में बात करो और अपनी तकलीफ बताओ।
3: तुम्हारी बेटी मेरी माँ का हाथ पकड़कर भगा ले गई, लेकिन वापस नहीं आई और कोई खबर भी नहीं। अब तक कुछ पता नहीं। अब तुम मुझे हकीकत बताओ और कुछ भी हो मेरी माँ को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ जलील कर दूंगी।
4: इसे बाहर निकालो।
5: बाहर जाओ। चलो।
3: मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारे पत्थर दिल से वाकिफ हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले नहीं जानते हैं? अगर मेरी माँ का पता बता दो तो ठीक है, वरना खुदाए काबा की कसम तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल कर दूंगी।
4: तुम्हें जो करना है करो।
6: बाहर निकालो इसे।
5: बाहर चलो।
3: मुझे छोड़ो।
7: चलिए यहाँ से।
3: नाइम, नाइम, नाइम, इसी ने तुम्हारी बीवी को मार डाला। इसी मर्द ने मेरे भाई की शादी के वक्त तुम्हारे बाप के हुक्म से तुम्हारी बीवी को तिजारत खाने में ले जाकर मार डाला।
6: ज्यादा ना बोलो औरत।
8: ये कौन सी जगह है?
2: नैनेवा।
0: इस्लाम का सिपाही बनना मुबारक हो हिलाल।
9: अभी तुम्हारे खतूत की स्याही भी नहीं सूखी, तुमने आलू लाह पर अपनी तलवारें खींच ली। तुम्हारी इतनी जुर्रत।
7: खुदा की कसम अपने किए पर जर्रा भर भी परेशान नहीं हूँ।
2: आज नईम का मकसद औहद को एतिमाद हासिल करना है।
10: हमें ढूंढ रहा है।
6: बिनते औहद,
11: खुदा मुझे मौत दे दे कि मेरा इमाम तन्हा है और ये मेरी जान के दुश्मन बने हुए।
4: सामिया सही कह रही थी, बेटा नहीं दिया तो मेरी बेटी को भी मुझसे ले लिया।
11: जब तक वो कश्मकश में है काम तमाम कर देते हैं। मैं तुम्हें ये कभी नहीं बता सका कि मैं अपने मौला अली के बाद तुम्हारा आशिक हूँ।

को पहुंचता है तो एक फरिश्ता आसमान से उतरता है। अब ये फरिश्ता किस लिए उतरता है, आप तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि अपनी आंखों को बंद करके तसव्वुर करें, आंखों को कभी बंद मत कीजिएगा वरना लूटे जाओगे, लेकिन कुछ लम्हे के लिए आप तसव्वुर करें। हदीसों के अंदर हमें मिलता है कि आसमान से एक फरिश्ता उतरता है, ये फरिश्ता क्या करने के लिए आता है, हाँ, और मा बैनल अर्ज वस्समा, जमीन और आसमान के दरमियान में ठहर जाता है। किस लिए आता है, हो सकता है शायद उसके हाथ में एक केक हो, उसके ऊपर 40 शमे लगे हुए हों, कैंडल्स लगे हुए हों, और वो आकर आपसे कहे सरकार 40 साल की आपकी उम्र हुई है तो हैप्पी बर्थडे टू यू सर, है ना। एक काश ऐसा होता है, या देखिए इंसान बर्थडे बनाने से बहुत खुश होता है, वो सिर्फ 40 साल की उम्र, तो आजकल तो 60, 80, 90, 100 साल के बूढ़े भी बर्थडे बनाते हैं, और क्या शान शौकत से, हाँ, और दुनिया के अचीवमेंट्स पर नाज़ो फ़ख्र करते हैं। ये फरिश्ता उतरता है, मा बैनल अर्ज़ वस्समा, आसमान और ज़मीन के दरमियान में ठहर कर ऐसे शख्स से मुखातिब होता है जो 40 साल की उम्र को पहुंचता है, और 3 बार पुकार कर उससे कहता है अर्रहील अर्रहील अर्रहील, अब जाने की तैयारी कर, जाने की तैयारी कर, जाने की तैयारी कर। यानी इस्लाम के मुताबिक 40 साल के बाद बोनस है जिंदगी, अगर इंसान जी रहा है, अगर हम 40 साल की उम्र के बाद भी आज जिंदा है तो ये अल्लाह की जानिब से रहमत है। इट इज़ नॉट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, इट इज मूविंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ, इस बात को समझे। लेकिन बंदा गाफिल है, हाँ, वो ये समझता है कि जिंदगी की इब्तिदा 40 साल को होती है। कुरान कह रहा है वजाअत सकरतुल मौत बिलहक ذلك ما كنت منه تحيد, और मौत की बेहोशी तुझ पर जरूर तारी होगी, यही तो वो आलम है कि जिससे तू किनारा किया करता था, कि जिससे तू भागा करता था। यानी तू ये समझ रहा था जिंदगानी ये दुनिया के अंदर कि सब मर जाएंगे, तू बाकी रह जाएगा। अपनी आंखों से देखता था लोगों को मरते हुए, लेकिन कभी तूने ये नहीं सोचा एक दिन तुझे भी जाना, सब ठाट पड़ा जा जाएगा जब लाट चलेगा बच्चा। हाँ, जब तूने जनाजों को देखा अपनी ज़िंदगी के अंदर, कभी तूने ये ख्याल तक नहीं किया, ये सोचा तक नहीं कि वो वक्त दूर नहीं जब तुझे भी उठाया जाएगा। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि, इसी सिलसिले में फरमाते हैं आह मिन क़िल्लत ज़ाद व बुअद सफ़र, अफसोस है कि ज़ाद राह कितना कम है, द प्रोविजन फॉर द हियर आफ्टर कितना कम है, और जो सफ़र है कितना तवील है, कितना दूर हमें जाना है। दुनिया में इंसान के साथ जिंदगी की बात करो, मौत का तसव्वुर उसके लिए दुश्वार है, मुश्किल है, सोचना मौत और आखिरत के बारे में दुश्वार है। लिहाजा इसीलिए हम देखेंगे कि बंदा गफलत में है। और मेरे दोस्तों, मेरे इस अशरे का मौजू और मज़मून यही गफलत है। इंशाअल्लाह इस अशरे में गफलत के बारे में ज़रूरी बातों पर आप लोगों की समाअत में गुफ्तगू रहेगी, और गफलत के असबाब व इलाज को भी देखा जाएगा। सूरह यूनुस की 7वीं और 8वीं आयतों की तिलावत का शरफ इब्तिदाई मजलिस में हासिल हुआ है। इन्हीं 2 आयतों को मैंने अपने सिलसिले कलाम का उन्वान भी करार दिया है। मुसलसल इस अशरे में इन आयतों की तिलावत होगी, आप इंशाअल्लाह सुनेंगे। परवरदिगार आलम का इरशाद हो रहा है इन्नल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना, यकीनन वो लोग के जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, वरहू बिल हयात दुनिया, और जिंदगानी ये दुनिया से खुश हैं, राजी है, और सिर्फ खुश और राजी नहीं बल्कि वत्मअन्नु बिहा,

तो ये है वो दो बातें, एक जिंदगानी दुनिया चंद दिनों की है, और दूसरी बात जो याद रखिए कि खुदा बंदे आलम ने मुझे और आपको बिला वजह पैदा नहीं किया, इसलिए पैदा नहीं किया कि इस दुनिया के अंदर आकर हम अपनी खुद की रूटीन बनाएं, एक जोन ऑफ कंफर्ट बनाएं और उसी में अपनी मुकम्मल जिंदगी को बसर करें। नहीं, मकसद खिलकत हयात भी है, और उलमाए अखलाक ने इस मकसद खिलकत हयात को तीन बताया है, कहा तीन है आम लोगों के लिए ताकि वो समझे। एक मकसद हमारी खिलकत का ये है मेरे दोस्तों कि हम इस जिंदगी के अंदर रहकर हमारे खालिक को पहचानें और उसकी मारिफत हासिल करें, हमारे खालिक को पहचानें, एंड वी बिकम कॉग्निजेंट, हाँ, मारिफत उसकी हासिल करें। दूसरा मकसद यह है कि तक्वा इलाही अख्तियार करें, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को इस दुनिया के अंदर निभाएं, जिम्मेदारियां जो अल्लाह की जानिब से हैं। और तीसरा मकसद यह है कि जो कुछ भी जिंदगानी दुनिया में करे आखिरत के गरज से करे, दुनिया के लिए नहीं। यानी इंसान तालीम हासिल करे आखिरत के लिए, आखिरत को संवारने के लिए, माल दुनिया भी जमा करें, तिजारत करें, कमाएं, तो गरज मकसद आखिरत हो, दुनिया ना हो। ये है वो तीन मकसद। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यही वो तीन बातें हैं जिससे अक्सर लोग दुनिया के अंदर, मैं और आप सब के सब गाफिल हैं, गफलत में है। वी आर हीडलेस, वी आर ओब्लिवियस एंड इंडिफरेंट। न खुदा की पहचान है, न तक्वा इलाही यानी कि जिम्मेदारियों को अदा करने की बात है, और न जो कुछ करते हैं इस जिंदगी के अंदर अल्लाह के लिए करते हैं, खुद की आखिरत कि इस दुनिया के अंदर। मेरे दोस्तों, हम लोग आपस में एक दूसरे से दुश्मनी मोड़ते हैं, है या नहीं? हकीकत है या नहीं? हा, एक दूसरे के साथ दुश्मनी मोड़ते हैं या नहीं? घरों के अंदर देख लीजिए, माँ बाप अपनी औलाद को दुश्मन समझते हैं, औलाद अपने माँ बाप को दुश्मन समझते हैं, होता है नहीं होता? हाँ, भाई भाई आपस में एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, साल हाँ तक बात करने के लिए तैयार नहीं, गुजराती में कहते हैं सग्गा भाई, लेकिन बात करने के लिए तैयार नहीं। भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, हाँ, चचा भतीजे, मामा भांजे, हालत देखें, हाँ, ये तो घरों की बात हुई है, सोसाइटी के अंदर आ जाइए, कौम के अंदर आ जाइए, मोमिनीन है आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, होता ही है नहीं? हाँ, नमाज सफ में नमाज साथ पढ़ते हैं, एक दूसरे के पहलू में खड़े रहते हैं, हाँ, और दिल में आप देखें तो बुग्ज और किना है। नमाज के बाद मुसाफिहा, हाँ, मुसाफिहे के बाद भी एक और मुसाफिहा, हाँ, ज्यारत पढ़ने के बाद, लेकिन दुश्मनी एक दूसरे से होती है नहीं है? इस्लाम हमें कह रहा है कि देखो ये सब जो है ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है, इस बात को समझे आप, ये सब जो है जिनको तुम दुश्मन बनाए रखे हो दुनिया के अंदर, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं, दरअसल तुम्हारे दुश्मन और जबरदस्त दुश्मन दो हैं जिनके बिना पर तुम ये सारे धंधे करते हो। वो दो कौन हैं? एक शैतान है कि जिस पर इंशाअल्लाह आगे चल के तफसील से गुफ्तगू आएगी, हाँ, इन्ना शैतान कान लकुम अदुवन फत्तखिदूहु अदुवा, यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा उसे तुम दुश्मन समझो, कुरान कह रहा है। हम शैतान को तो दुश्मन कभी मानते नहीं, मोमिनीन को मानते हैं, घरों में अपनी औलाद और माँ बाप को दुश्मन मानते हैं, या नहीं? तो ये है एक दुश्मन, हाँ, कुरान कह रहा है। और दूसरा दुश्मन हमारा गफलत है, हमारी हमारी गफलत, हीडलेसनेस। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैह फरमाते हैं कि अल गफलतु अज़र्रुल अदू, समझो कि गफलत जो है, हीडलेसनेस जो है, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला तुम्हारा दुश्मन है। मौलाए कायनात का ये कौल, और आप उसके बाद फरमाते हैं कि मन तालत गफलतुहु तअज्जलत हलकतुहु,

उसके बाद उसका बेटा अली होगा उसके बाद उसका बेटा हसन होगा और हसन का बेटा मोहम्मद खाइमुल मुंतजर होगा ये कहने के बाद तारीख के अंदर हमें मिलता है कि इमाम एक मर्तबा खड़े हो गए क़िबले की जानिब देखकर आपने अपने हाथ को अपने सर पर रख के झुकाया और तीन बार आपने फरमाया अज्जलल्लाहु तआला फरजा अज्जलल्लाहु तआला फरजा। ये उलमा ये कहते हैं कि ये हरकत जो हम करते हैं इमाम का नाम सुन के सर पे हाथ रख के सर को झुकाना क्योंकि इसका भी मस्खरा उड़ाया जाता है आजकल ये सुन्नतुर रज़विया है यानी आठवें इमाम की सुन्नत इसका जिक्र आया तो शेर व अशआर जो मुकद्दस मकासिद के लिए किए जाए इस काबिल दाद है इस्लाम के नजर में वरना शेर व शायरी या वो शुआरा जो फजूल अशआर पढ़ते हैं शेर व शायरी करते फजूल का मतलब समझना चाहते हैं आप गूगल पर चली जाइए और टाइप कीजिए उर्दू शायरी और जब खुले तो इमेजेस में चले जाइएगा और देखिएगा जो शेर व शायरी आपके सामने आते हैं फजूल शेर व शायरी उर्दू के और क्यों इस्लाम तशरीह नहीं दे रहा है इनकरेज क्योंकि ये शेर व शायरी फजूल जो है ये अल्फाजों का एक नशा है इंसान जमीन पर रह कर भी उसे निकाल कर ये अल्फाज उसे निकाल कर हवा में परवाज कराती है तखय्युलात और तसव्वुरात की दुनिया में मुनहसिर कर देती है हकीकतों से अलग कर देती है इसीलिए कुरान ये कह रहा है वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गाऊन और जो शेर व शायरी करते हैं उनके ताबेदार उनके फॉलोवर्स कौन है गाऊन गुमराह लोग हैं वह शेर व शायरी फजूल शेर व शायरी हाँ, कुछ लोग हैं जो जोक रखते हैं हाँ, मुझे भी शेर व शायरी का जोक है लेकिन मैं खबरदार रहता हूँ होशियार रहता हूँ जी हमारे नैरोबी में जो लोग नैरोबी जा चुके हैं एक ज़माना था कि वहाँ पंजाबी लोग की हुकूमत चलती थी माशाल्लाह मोमिनीन के फिर उसके बाद वो हिजरत कर गए स्कॉटलैंड चले गए कुछ कनाडा कुछ अमेरिका चले गए लेकिन एक ज़माना उनका था और बाद में खोजे हजरत आए मुंबासा से अब जब तक ये थे पंजाबी हजरात और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग तो मैं 60s लेट 60s और अर्ली 70s की बात कर रहा हूं हर साल में मुशायरा का प्रोग्राम होता था हर साल मुशायरे का प्रोग्राम होता था और मुख्तलिफ कौम के शुआरा आते थे हिंदू आते थे सिख आते थे सुन्नी आते थे शिया थे उसमें सिख थे सब आते थे जमा होते थे तीन घंटे का प्रोग्राम रहता और अशआर पढ़ते गजलें पढ़ते और लोग खुश हो जाते क्योंकि अल्फाजों का नशा होता था अब उस जमाने में एक हमारा बंदा था खोजा जो रमूजी किस्म का था हा? और लोग उसे भी जानते थे ये हर साल बेचारा आता था या नैरोबी में है या नहीं हाँ पार्टिसिपेट करने के लिए लेकिन उसको बेचारे को कोई दावत नहीं देता था वो जोक था इसलिए आता था तो एक मरतबा जब आया है शेर व शायरी का प्रोग्राम जब ख़त्म होने को आया है तो जो इंचार्ज था मास्टर ऑफ सेरेमनी कहते हैं हाँ उसने कहा कि आज फुला साहब जो है हमारे दरमियान में हैं उनकी औलाद को मैं इस मजमे में देख रहा हूँ मुस्कुरा रहे हैं हाँ कहा फुला शख्स भी आए हुए हैं हम उनसे दरख्वास्त करते कि क्लोजिंग जो शेर है वो आके बयान करें अभी उनको ऑफिशियली नहीं बुलाया गया था तो वो खड़े हुए और उसने ऐसी शायरी की कि उसके बाद प्रोग्राम हुआ ही नहीं हाँ और सिंपल सी शायरी सुनिएगा उसने कहा गुल गए गुलशन गए गुल के पत्ते रह गए हाँ गुल गए गुलशन गए गुल के पत्ते रह गए शायर सब मर गए उल्लू के पट्टे रह गए हाँ तो ये जो है फजूल शेर व शायरी आप देखें वमा यम्बगीला इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुन मुबीन ये जो कुरान नाज़िल ये आसमानी किताब जो है ये जिक्र है यानी याद दिलाने वाली और गफलत से बेदार करने वाली किताब है और कुरान मुबीन है मतलब ये मेरे दोस्तों कि शेर व शायरी वो के जो तुम्हें तखय्युलात और तसव्वुरात के दुनिया में ले जाकर मुनहसिर कर दे जमीन पर रहकर भी तुम फिजा में परवास कर जाओ कुरान वो किताब है जो जमीन से आसमान की तरफ नहीं गई आसमान से उतारी गई है जमीन की तरफ ताकि बंदा हकीकतों का सामना करे और तसव्वुरात और तखय्युलात पर मबनी नहीं है हकीकतों पर है इन हुआ इल्ला ज़िक्र।

आओ बच्चों, हम सब जालिमों से इजहार बेजारी करें, सैयदा जैनब ने जो की वो अजादारी करें, बावफा हैं शेह के मकसद से वफादारी करें, यूं इमाम वक्त के आने की तैयारी करें।

आओ बच्चों, हम सब जालिमों से इजहार बेजारी करें, सैयदा जैनब ने जो की वो अजादारी करें, बावफा हैं शेह के मकसद से वफादारी करें, यूं इमाम वक्त के आने की तैयारी करें।

उसने लिबादा ऐसा उड़ा, उसने अपने आप को उस तरह नहीं आया कि मैं आ रहा हूं, मुझे यजीद ने भेजा है, नहीं, लोग सही तो शहदा का इंतजार कर रहे थे, लोग चाह रहे थे कि वो आएंगे, आराम से आएंगे। ये भी इसी तरह लिबादे में आया कि किसी को महसूस नहीं हुआ, और आते ही इसने जो है वो दारुल अमारा पे कब्जा किया, नामा दिया और मेरा सब खत्म, जो पहले गवर्नर था उसको हटा दिया। फिर इसने अपने बंदों को माशरे में पेनिट्रेट किया, जासूस, और उन्होंने खौफ फैलाना शुरू कर दिया।

जवान ट्रेनिंग करते थे, बड़ी तादाद थी, अच्छी खासी बड़ी तादाद थी, और ये थोड़े से लोग थे। इन्होंने कहा कि भाई सरेंडर कर दो, जबकि वो बहुत ज्यादा थे, अगर लड़ते तो कुछ शहीद होते, बाकी तो खत्म कर देते। खौफ की वजह से हजारों की तादाद ने कुछ के लिए सरेंडर कर दिया और उन सब की गर्दनें दाइश ने काट दी। खौफ, दुनिया खौफ क्रिएट करती है, लेकिन जो अल्लाह की राह में चलता है वो खौफ से नहीं डरता, वो इतना मजबूत होता है कि फिर दुनिया उसका खौफ खाती है। सैयदुश्शोहदा रोज़े आशूरा, सब शहीद हो गए, खुद भी ज़मीन पर, मगर इतनी शुजाअत थी कि दुश्मन के दिल में खौफ था, करीब आते हुए भी डर लग रहा था। ये दिखाना पड़ता है इंसान को अपने वजूद से, अपने किरदार से, लगने पड़ता। तो आज हमारे दिलों में फ्यूचर का खौफ है, कल जिंदगी में क्या होगा उसका खौफ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस्लाम आपको इस दावत, इस्लाम आपके लिए बहुत इजी दिन लेकर आया, इस्लाम आपको बहुत आसानियां दे रहा है। ज़ाहरी मुश्किलात अपनी जगह पर है, लेकिन परवरदिगार तो है इंसान की ज़िंदगी में, अगर कोई ना हो तो खुदा तो है इंसान की ज़िंदगी में। असल यही है कि इंसान अगर अल्लाह के वली के लिए अपना रास्ता इख्तियार करता है तो खुदा खुद उसकी नुसरत करता है। अंबिया औलिया का काम क्या है, अल्लाह के वली का काम क्या है? मिनज़ ज़ुलुमाते इलन नूर, यानी तारीकियों से नूर की तरफ लेकर आए, नूर की तरफ लेकर आए। दुनिया आज उसी नूर का इंतजार कर रही है, वो नूर के जो पूरे आलम को रोशन करेगा, वो कि जिसका वजूद है, जो खुद पर्दाए गैबत में है, लेकिन हमें अपने आप को इस काबिल करना है कि वो नूर हमें नजर आ सके। हम इतने ज्यादा अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए, हम इतने ज्यादा अपने कामों में फंस चुके हैं कि हमें इमाम नजर नहीं आ रहे। इंसान खुद अपने आप को इस काबिल कर सकता है कि वो इमाम के वजूद तक पहुंच सकता है। जाने मोहतरम, बहरहाल हम अपनी इबारत, हमने इमाम तक पहुंचना है और इमाम के खेमे में दाखिल होना है, तो उसकी बहरहाल डिफरेंट स्लॉट्स हैं। एक इज्तमाही है, एक इंडिविजुअल, एक इंसान की फैमिली का सिस्टम है। अब हमें अपने आप को देखना है कि क्या हम सब जगह बेहतर हैं कि नहीं है। बास लोग मस्जिद में बहुत अच्छे हैं लेकिन इज्तिमा के अंदर अच्छे नहीं, बाद लोग इज्तिमा में अच्छे हैं मगर इबादत में अच्छे नहीं, बाद दोनों जगह अच्छे हैं मगर अपने घर में अच्छे नहीं हैं, और फिर कुछ सब जगह पे अच्छे हैं मगर अपनी तन्हाई में अच्छे नहीं हैं। तो जो इमाम को चाहिए, इमाम को पूरा पैकेज चाहिए, इमाम को ऐसा नहीं चाहिए एक तरफ से कमज़ोर हो एक तरफ से नहीं, क्योंकि जो लोग इमाम की खिदमत में जाएंगे उनके वजूद बहुत पाक होंगे, बहुत बातें होंगे। रिवायत आपने सुनी होगी, दोबारा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इमाम फरमाते हैं कि जो लोग आखिरी ज़माने में यानी इमाम ज़माना तक पहुँचे, उनकी ये खसूसियत ये होगी कि जब वो कदम बढ़ाएंगे तो वो मदीना में पहुँच चुके होंगे, जब वो इशारा करेंगे तो दरख्त भी अपनी जगह छोड़ देंगे, बादलों में वो सफ़र कर सकते हैं। अब देखने को भी बातें बड़ी फैसिनेटिंग सी लगती हैं कि मतलब पता नहीं कैसे होगा, लेकिन ये सब ज़ाहरी टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें तो ज़ाहरी टेक्नोलॉजी भी इसको करीब कर रही है, लेकिन जब इंसान बातनी तौर

0: पर इतना मजबूत हो जाता है तो वो इस आलम पे तस्खीर कर लेता है, यानी ये आलम जो है इस आलम को वो जो है वो अपने कंट्रोल में लेता है। कुरान जो है इन सारी बातों की हमें निशानदेही कराता है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोई चीज़ ऐसी अनहोनी कह दी गई, मतलब हजरत सुलेमान का जो वाकया है कि तख्त बिल्किस का जो वाकया है कि उस तख्त को लेकर आओ, क्योंकि वो आने वाली थी और उनको दावत दी थी उन्होंने इस्लाम की या मज़हब की, और वो आने वाली थी तो उन्होंने कहा कि भाई कोई है जो उसको लेकर आए उनके तख्त को, तो ज़ाहिर है जब उनके आने से पहले अगर उनका तख्त पहुँच जाएगा तो वो वैसे ही मतलब उनका ईमान क्या मजबूत होगी, बोलेंगे यही हक का इंसान। तो जितने भी उनके पास तो जिन भी थे, बाकी मखलूकात भी उनके कंट्रोल में थी, तो किसी ने बोला आधा दिन लगेगा, किसी ने बोला क्या लगेगा, लेकिन कुरान कहता है कि एक शख्स बैठा हुआ था और उसने कहा कि मैं पलक झपकते ले आऊँगा, यानी पलक झपकते मैं उस तख्त को ले आऊँगा, और उसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, कुरान की आयत है कुरान, उसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था। अच्छा वो लेके कैसे आया, यहाँ तक तो सभी सुनते रहते मगर वो लाया कैसे, यानी क्या हुआ, कुछ हुआ तो होगा ना। वो कहते हैं कि बहरहाल रिवायात रोशनी बयान करती है कि ज़मीन जो है वो फट गई, यानी जगह छोड़ दिया ज़मीन ने, और उनके लिए वो जो तख्त था वो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे हाथ से पकड़ना है, ज़मीन हटी, तख्त को खींचा, पलक झपकते आ गया, यानी ये ज़मीन आसमान ये मिट्टी ये सब फॉर्मूलास पे चल रही है, ये मूवमेंट है ना, ये सब हमारे हमें लगता है सब ऐसा है लेकिन अल्लाह के नज़दीक सब फिक्स है, डिजिटल है। अब साइंस तरक्की कर गई है कि दुनिया का एक मेदार है
1: यार,
0: अब दुनिया का एक मेदार है, इसी तरह गैलेक्सी का एक सर्कल है, उससे बाहर नहीं निकल सकती, उससे पीछे इतना कैलकुलेटेड है, ज़रा सा इधर हो जाए सूरज की गर्मी ख़त्म कर दे, बाहर चला जाए सर्दी उसको ख़त्म कर दे, तो ये सब फॉर्मूलेज हैं। अब जो अपने आप को इस काबिल कर ले कि वो इन कायनात के फॉर्मूलों तक पहुंच जाए, जैसे आप एआई का दौर है, जिसके पास अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना आता है वो उतना अच्छा एआई बनाता है, प्रॉम्प्ट पर है ना, एआई तो प्रॉम्प्ट पर चल रहा है, आगे एप्लीकेशन भी आपके पास पेड होनी चाहिए, जितना पैसा देंगे उतनी अच्छी आपको एआई की एप्लीकेशन मिलेगी, लेकिन प्रॉम्प्ट जो अच्छा लिख सकता है वही सब कुछ कर सकता है। अब जिसके पास इस कायनात के प्रॉम्प्ट हो वो पलक झपकते क्या करेगा, और ये प्रॉम्प्ट किसके पास है, ये जो कुरान की जो आयत है कि जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, रावी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम यार इमाम से पूछा कि मौला ये कौन सा इल्म था कि जो कुरान ने इशारा कर रहा है, कहा कि हम इल्म के दरिया हैं और उसके पास जो इल्म था वो कतरा था। तो अब आपको अगर कायनात के प्रॉम्प्ट चाहिए तो अहले बैत से कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, और जब कोई इमाम ज़माना के लिए हो तो उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका ब्रेन इन सारी चीज़ों को डिसॉल्व कर सके, आप अपने जहन को इस, जैसे कल मैंने आपको खिदमत में अर्ज़ किया कि दुश्मन का काम है आलूदा करना, नजासत ना ना बाकी गलत थॉट्स चीज़ें आपके जहन में डालना, आपकी आँखों को आलूदा करना। आँख तो ज़ाहिर है ऐसी चीज़ है कि अगर कोई फ्रेम सामने आ जाए तो इतना आसान नहीं होता उसे डिलीट करना, ये कहीं ना कहीं रिकॉल करता रहता है, इसलिए कहते हैं कि इंसान अपनी आँखों की हिफाजत किया करे। ये मत समझे नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं तो मतलब मैं तो मजबूत आदमी हूँ, नहीं जाने मतलब, बहरहाल शैतान इसी तरीके से इंसान के अंदर नफूस करता है, इबलीस जो है वो किसी को नहीं छोड़ता, बड़े बड़े औलिया की खिदमत में, बड़े बड़े उलमा के पास, एक आलिम दीन के सामने आया और या अली अभी मैं फिर कुछ बोलूँगा फिर लोग क्लिप काटेंगे और फिर उसके बाद मैं कुछ और बना देंगे, सलावत भेज दें मोहम्मद वाले, आजकल तो ये बड़ा मसला है, کوئی یہاں تو بیٹھا نہیں

होता कि क्यों क्या बोला जा रहा है। तो वैसे भी लोगों को ट्रेंडिंग वायरल चीज़ें चाहिए माशरे के लिए। बहरहाल आप लोग इग्नोर किया करें, मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, अयाम है, मुहर्रम है। इस तरह की चीज़ें अगर कोई आ भी जाए, किसी से गलती भी हो जाए, इंसान है, गलती हो सकती है, इंसान इग्नोर किया करें, एक दूसरे को सैयदुश्शोहदा के सदक़े में माफ़ किया करें, दिल अपना बड़ा रखे। इमाम का कारवान है, सब इसमें शामिल होना चाहते हैं। ये वो कारवान है जिसमें सैयदुश्शोहदा ने जॉन को भी बुलाया है, हबीब इब्ने मज़ाहिर को भी बुलाया है। तो ये तो उनका कारवान है, इसमें हमारी तो कैसे भी कोई मजाल नहीं है। हो सकता है हमारी पूरी मजलिस कबूल ही ना हो, बच्चे का छोटा सा नारा कबूल हो जाए, फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए बहरहाल इन सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना है। जाने मोहतरम, अब आप देखिए कि ये नजासत जब पेनिट्रेट की जाती है, तो आलिम दीन थे, उन्होंने कहा कि इबलीस उनके सामने आ गया, तो उनका तुम मेरे वक्त जाया करते हो, तुम अपना तुम मुझसे जीत नहीं सकते। तो उनका नहीं नहीं मैं, आप मेरे से बहस करें, मुबाहसा करें, मुनाजरा करें। मुनाजरा किया, शैतान हार गया। कहा मैंने आपको कहा था इबलीस को कि तुम नहीं जीत सकते मेरे से। कहा मुझे पता था मैं आपसे जीत नहीं सकता, लेकिन मैं आपका वक्त ऑक्यूपाइड करना चाह रहा था, मैं आपका वक्त लेना चाह रहा था, ये वक्त मैं आपका ले लूँगा तो फिर क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, इबलीस वसवसे करता है, साजिश करता है। आपके दिल में हुब्बे अहले बैत है, आप टोटल नुकसान में नहीं हो सकते कभी भी, ये याद रखिएगा, कभी भी नहीं हो सकते। जिस मन माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप बहुत कीमती हैं। इस कीमती खजाने को इबलीस लूटना चाहता है, तो आप कभी भी अपने आप को नहीं बेचे। इतनी बेहतरीन चीज आपके पास है, अहले बैत की मोहब्बत है, इससे आप पता नहीं दुनिया में क्या कर सकते हैं। आप मौलाए कायनात की गुनाह की लज्जत बहुत थोड़ी देर की है, मगर पछतावा बहुत तुलानी है। तो आप अपने आप को ना बेचे जाने मोहम्मद, ये आलूदगी हटेगी, जहन फोकस करेगा, तो खुद ब खुद आप अपने आप को अपने इमाम तक पहुंचाएंगे। हमें बस इसकी स्ट्रगल करनी है कि हम आया अपनी ज़िंदगी में इसको पैटर्न को डिज़ाइन कैसे करें। ये पैटर्न है एक्चुअली। तो आपकी ज़िंदगी में इबादत अपनी जगह, इज्तमाहियत अपनी जगह, हुकूकुल इबाद आपकी अपनी जगह, और बहरहाल आपके लिए बाकी सारी चीज़ें। इंसान इंटरनल स्ट्रक्चर से अपने आप को वाजे करें कि इंसान का अंदर का स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। यानी आप अपने जाहिर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, खुशबू लगाते हैं, कुछ भी, बहरहाल इंसान जाहिर, और जाहिर ज़रूरी भी है, लेकिन बातिन पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आज माशरे के अंदर जो प्रॉब्लम है, ज़्यादा मतलब बहुत प्रॉब्लम है, इखलाकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा हो चुका है, घरों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, जाहिर है लोग हमसे कंसल्टेंसी करते हैं, बहुत मुश्किलात। उसकी एक वजह सबसे ज़्यादा इंसान का किरदार सही ना होना, और किरदार कपड़ों से नहीं बनता, किरदार ब्रांड से नहीं बनता, किरदार इखलाक से बनता है। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल खुदा इरशाद फरमाते इन्नमा बुइस्तु लिल्मकारिम लिल्खलाक, मुझे मबऊस ही नहीं किया गया मगर सिवाय इखलाक के। इखलाक कैसा इखलाक है? एक यतीम बच्चा है मदीना, और रसूल खुदा गुजर रहे हैं, देखा कि बच्चे को तंग कर रहे हैं, यतीम है, और अब यतीम बच्चे को कह रहे हैं तुम्हारी माँ, मेरी माँ तो इतनी अच्छी है, तुम्हारी माँ, मेरे वालिद तो ऐसे हैं, तुम्हारे वालिद, अब वो बेचारे के वालिद ही नहीं है। रसूल खुदा ने देखा कि बच्चे को बहुत अजियत कर, कहा क्या हुआ? कहा मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, मेरी बहन बड़ी हो गई, उसने भी शादी कर ली, मेरी वालदा ने भी कर ली, तो मैं वैसे भी अकेला हूँ, और उससे बड़ी मुश्किल, ये मुझे अजियत कर रहे हैं।

एक एक करके एक एक करके एक एक कर कर एक एक कर कर सब खत्म करो। खत्म किया, आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। यहां तक के इमाम हसन मुस्तफा अलैहि सलाम के अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद के खेमे में इमाम के नीचे से इमाम की जानमाज को खींच लिया गया, इमाम के खेमे में। कौन लोग थे, क्या स्ट्रैटेजी थी, यहां तक। और ये सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, देख रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, इसको यहां, उसको वहां, इसको ऐसा कर। सैयदुश्शोहदा ये देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। घर का दरवाजा जल रहा है, फिर उसके बाद क्या हुआ, बाबा के साथ क्या हुआ, कूफा में क्या हुआ, फिर मदीना में क्या हुआ, सब देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। मकाम परस्ती के लिए, हर चीज के लिए। मगर सैयदुश्शोहदा ने भी फिर ऐसा सिस्टम डिजाइन किया। देखिए दुश्मन डिजाइन कर रहा था, ये दुश्मन ने स्ट्रैटेजी डिजाइन की हुई थी कि उस नहज पे मैं ले आऊंगा कि इस्लाम, नया इस्लाम आ जाएगा। इस्लाम वो के वो चाहते थे, वो इस्लाम आ जाएगा और कयामत तक का यही इस्लाम चलेगा। सब खत्म करते जाओ, सब हटाते जाओ, जो रुकावट आया हटा दो। यही किया उन्होंने। इमाम को मदीना के गवर्नर ने बुलाया और क्या कहा, ये खत आया है, यजीद की बैत कीजिए, और अगर बैत नहीं करते तो वो साथ जो बैठा हुआ था उसने बोला कि भाई गर्दन उतार दो, तो यही मौका है, क्यों हटा दो। एक शख्स यजीद को पूरी हुकूमत में किसी से मसला नहीं था, सिर्फ एक शख्स से मसला, और एक शख्स, वो एक शख्स नहीं था, वो पूरी कायनात को पलट सकने वाला शख्स था। इमाम ने भी, इमाम है जाने वाला, इमाम ने भी ऐसा सिस्टम डिजाइन किया कि मैं मदीना में नहीं, मक्का में भी नहीं, मक्का भी छोड़ दिया इमाम, ऐसी जगह पर यजीद को बुलाऊंगा, पूरी यजीदियत को ऐसी जगह बुलाऊंगा कि कयामत तक की यजीदियत तड़पती रहेगी। यानी वो जो मेहनत की थी ना इन्होंने, इतनी सालों की, इतनी हुकूमतें, इतना एम्पायर जो डिजाइन किया था, उस पूरे एम्पायर को तो सिर्फ जनाबे जैनब के जुमलों ने उखाड़ दिया, उखाड़ दिया। अली की बेटी ने शाम के दरबार में जब कहा ना, उसको खामोश हो जाओ, वही पूरी मुमलकत मुलुकियत तमाम है। सैयदुश्शोहदा इमाम हुसैन का डिजाइन किया हुआ स्ट्रैटेजिकल मूवमेंट, सिर्फ कारबला, सिर्फ जज्बात, एहसासात नहीं है जाने मोहतरम, अकल और शऊर का कमाल है कारबला। यहां जज्बात में लोगों ने जाने नहीं दिए, लॉजिकली भी लोग जानते थे कि यही कमाल है, लोग जानते थे, लोग मारिफत पे पहुंच चुके थे इमाम की, इमाम को पहचान चुके थे लोग कि ये जो है ये है। इसलिए तो देखे ना हबीब अपने मजाहिर में रोजे आशूरा क्या कहा, जंग हो रही है, हालात हैं, शहीद भी हो चुके होंगे लोग। हबीब अपने मजाहिर पूछ रहे, मौला मैं एक सवाल पूछूं अगर आप इजाजत दें, लेकिन मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि मुझे कोई जान का खौफ है, नहीं, मैं अपने मारिफत में इजाफे के लिए पूछ, यानी अभी दुनिया में शहादत पर जाने के लिए है फिर भी इजाफा चाह रहे हैं वो। देखें आप कमाल देखिए उन लोगों का, कहा कि मौला जब आप इस दुनिया में नहीं आए थे तो फिर क्या थे, तो इमाम ने बोला हम अर्श पर नूर की तरह चमक रहे थे। मारिफत लॉजिकल है, कोई नुकसान नहीं है, पूरी उस

स्ट्रक्चर को इमाम हुसैन ने तोड़ा, न सिर्फ तोड़ा, न सिर्फ 61 हिजरी के यजीद को तोड़ दिया, कयामत तक की यजीदियत इसी हुसैनियत से घबराती है। आज यही हुसैनियत है जाले मोहतरम, यही या हुसैन लब्बैक या हुसैन की सदाएं हैं जिससे दुश्मन घबराता है। किसी के पास नहीं है ये दानिशगाह यूनिवर्सिटी सिवाय इमाम हुसैन के पास, किसी के पास ये बेदारी नहीं है, किसी के पास नहीं है जवान अली अकबर, किसी के पास नहीं है हजरत अब्बास जैसी बहादुरी वफादारी, सिर्फ हुसैन की बारगाह है। और यही बारगाह है जिसने आज के यजीद को भी ललकार दिया, ललकार दिया ना आपके सामने। साइन करते वक्त क्या बोल रहा है, इट्स नॉट ईजी, आसान नहीं था, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तो आप इमाम के गुलामों को देख रहे हैं, अभी तो जब वो खुद आएगा तब पता चलेगा कि वो आईना पे दमे मक्तूल में करबला। एक तो करबला का बदला लिया जाएगा जाने मोहतरम। हम अपने आप को जाने मोहतरम तैयार करें, खुदा के लिए तैयार। बहरहाल आप तैयार होंगे तो इमाम आएंगे, हमने खुद पहुंचना है। कल आपकी रिदमत में अर्ज किया, इमाम को नहीं बुलाएं, हम खुद इमाम तक पहुंचे, खुद पहुंचे इमाम तक, खुद अपने आप को इतना बड़ा कर लें, इतना एनहेंस कर लें लॉजिकली, इल्मी तौर पर, मानवी तौर पर। बहरहाल वक्त बहुत तेजी से जाने मोहतरम, 2 मुहर्रम और अपने आप को इस कारवान में शामिल करें। सफीनतुन निजात हुसैन है, हर दौर में निजात हुसैन है, बहुत करीब है हुसैन। जो शख्स इमाम की ज्यारत में जाता है, कल मैं रिवायत चल कोई वहां पढ़ा कि 3 जगह इमाम हुसैन की निगाह होती है, तीन तरह के लोगों में। एक वो जो इमाम की ज्यारत पे जाता है, खुदा हम सबको करबला की ज्यारत नसीब फरमाए। दूसरा जो इमाम के लिए गिरिया करता है, इमाम खुद उसको देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं। आप अपने आप को कम तर मत समझा रहे हैं, आप बहुत अजीम हैं, आपकी आंख में आंसू यानी इमाम हुसैन आपको देख रहे हैं। तीसरा वो जो इस मजलिस, इस आज़ादारी के लिए इंतज़ाम करता है, ये सब जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं, इमाम हुसैन देख रहे हैं उनको, कितने घंटों से स्काउट लगी हुई है, इंतज़ामिया लगी हुई है, पुलिस है, सिक्योरिटी है, हर शख्स वीडियो बना रहे हैं, साउंड वाले, सबीलों वाले, पार्किंग में खड़े हुए हमारी बहनें बेटियाँ। आप घबराया ना करें अगर कभी कोई आपको बुरा कह दिया करे, इमाम हुसैन आपको देख रहे हैं। जो शख्स पानी पिला रहा है, चाय पिला रहा है, हत्ता जो शख्स जूते भी सीधे कर रहा है, इमाम हुसैन उसे देख रहे हैं। इमाम हुसैन बहुत करीब है, इमाम हुसैन के लिए छोटी बड़ी मजलिस नहीं होती, इमाम हुसैन सिर्फ दिल को देखते हैं। अजाने मोहतरम, जनाबे मुस्लिम कूफा में तनहा रह गए, बहुत तेजी से क्योंकि 2 मुहर्रम के मसाइब भी हैं और जनाबे मुस्लिम से मुंतसिल, जनाबे मुस्लिम तनहा रह गए। आप जानते हैं रात की तारीकी, कूफा की गलियां, दरवाजे एक दीवार से टेक लगा के खड़े हुए, खातून बाहर आई, देखा वापस चली गई, उसका अपना बेटा नहीं आया था, बेचैन थी, फिर बाहर आई, देखा वही खड़े हुए, कहा कौन हो, अपने घर जाओ, पता नहीं है इब्ने ज़ियाद ने कितनी सख्ती की हुई है मुस्लिम बिन अकील की वजह से। तो कहा मेरा घर नहीं है। कहा क्यों, कहा मुसाफिर, कहा पानी मिलेगा, अंदर गई पानी ले आई, कासे में पानी पिया, फिर चली गई, फिर वापस आई,
कहा तुम अभी तक खड़े हुए हो, अभी तक बैठे हुए हो, अपने घर जाओ, मेरा यहां घर नहीं।

कहाँ कहाँ से? कहाँ मदीना से। मदीना का नाम सुनना पहले वैद की मानने वाली थी। कहा मदीना में कहाँ से आए? कहा पूछा बनी हाशिम से आए। कहा पूछा बनी हाशिम से कहाँ से आए? जब पता चला कि मुस्लिम है, जाने मोहतर घर लेंगे। रात भर जनाब मुस्लिम इबादत करते रहे, इबादत करते रहे। जानते थे कि आखिरी रात है, और वो सब आपने सुना कि उसके बेटे ने या उसके दामाद ने आकर किस तरीके से मुखबरी की, जनाब मुस्लिम को घेर लिया गया, और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर कर दारुल अमान कर ले गए। जनाब मुस्लिम के लिए इब्ने ज़ियाद लईन ने हुक्म सादर कर दिया गिर। जब उन्हें लेकर जा रहे थे तो जनाब मुस्लिम गिरिया था उनकी आंखों में आंसू थे। शख्स ने कहा रो क्यों रहे हो? अगर रोना था तो ऐसा काम नहीं करते। कहा मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं इमाम हुसैन के लिए रो रहा हूँ जो अपने कुंबे के साथ इधर आ रहे थे, और कूफा वालों में वफा नहीं है। हाँ जनाब मुस्लिम दारुल अमारा से जमीन पर उन्हें फेंक दिया गया। यहां खबर इमाम को मिली है रस्ते में एक मकाम पर। इमाम जानते भी थे, लेकिन खबर इमाम ने लोगों से ली कूफा वाले। बस मैं पीछे चलता हूं। 28 रजब की रात है, मदीना है। एक सहाबी है जो इनके घर के बराबर में रहता है, उरवा गफ्फारी उसका नाम है। कान संगीन है, भारी है, सुन नहीं सकता ज़्यादा, हत्ता बिजली की गरज भी हो तो भी उसे आवाज़ नहीं आती। 28 की शब उठ जाता है। बीवी पूछती है क्या हुआ? कहा मुझे तो बिजली की गरज भी सुनाई नहीं देती, मगर कुछ बीवियों के रोने की आवाज़ आ रही है। कहा कौन रो रहा है? कहा ये जनाबे सैयदा की बेटियां हैं, मदीना छोड़ के जा रही हैं। हज़रत मोहतरम मदीना छोड़ना आसान नहीं था। वो जगह जहां नाना का रोजा हो, वो जगह जहां पर खुद इमाम हुसैन बड़े हुए हो, मदीना छोड़ना आसान नहीं था। कहते हैं कई बार अपने नाना के रोजे पर रहे, और आखिरी दफा गए इतना गिरिया किया कि इमाम हुसैन बेहोश हो गए। और कहते हैं ख्वाब में देखा रसूल खुदा ने कहा कि हुसैन बस अब जल्दी करो। इमाम हुसैन रात की तारीखी में अहले बैत की सवारियां ताकि कोई देख ना सके, महमल पे पड़ते जनाब अब्बास जनाब अली अकबर सवार करवा रहे हैं। जहन में रखे किस शान व शौकत से ये सवार हुए हैं। कारवां चलता चलता मक्का ने छोड़ता हुआ 2 मुहर्रम को एक जगह पहुंचा, देखा कि इमाम की सवारी आगे नहीं बढ़ रही, रुक गई। मकातिल कहते हैं इमाम ने सवारी को तब्दील किया, एक घोड़ा दूसरा घोड़ा 6 सवारियां कहते हैं तब्दील की, मगर जानवर ने हरकत नहीं की, नहीं मूव कर पाया, नहीं चल पाया, सर झुका के खड़े हुए हैं। इमाम ने हजरत अब्बास से कहा कि अतराफ के जो लोग हैं इनको बुलाओ। उनसे पूछा इस जगह का नाम क्या है? मुख्तलिफ नाम बताए।

मैं पढ़ ना पाऊंगा और आप सुन नहीं सकते। बदनों की हालत वो थी कि जो बेटी बाबा के सीने में सोती थी ना, वो 11 मुहर्रम को अपने बाबा को पहचान नहीं पाई। बदन उस हालत में थे। बस अदालत मोहतरम, बस 3 दिन बाद जब मेरा मौला करीब इमाम आया ना इजाजे इमामत से, बस आप बसाए बात में सुनेंगे, एक एक कर कर दफना दिया। जब एक बदन में पहुंचा ना तो सबको कहा इसको मैं खुद दफनाऊंगा। किसका बदन है? कहीं बाबा का बदन है। हाँ हुसैन वालो, मौला तुम्हें जिंदगी दे, सलामत रखे। बाप तो बड़े बाप होता है ना औलाद के लिए, जैसा भी हो किसी औलाद ने ऐसा बदन नहीं देखा होगा। बस मैं इमाम का जुमला, मक्तल का जुमला, और आपसे जमा से दुआ, इमाम ने अपने बाबा के बदन को उठाया नहीं, अपने बाबा के बदन को समेटा। समेट कर करबला की जमीन में लिटाया। और यही कहा होगा, ऐ करबला तेरी जमीन में तो कितनी खुशनसीब है, सर मौजूद नहीं है कि रुखे किबला किया जाए, कटी हुई रगों को रुखे किबला किया।

0: आओ बच्चों, हम सब जालिमों से इजहार बेजारी करें, सैयदा जैनब ने जो की वो अजादारी करें, बावफा हैं शेह के मकसद से वफादारी करें, यूं इमाम वक्त के आने की तैयारी करें, तैयारी करें, तैयारी
1: करें। आ रही है आज भी मैदान से हल मिल सका।